मुरारा, शिव शक्त मिटाइया चूका अंधियारा, तुर मस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा, हर कित बिद पाई संत जन हो जिस देख हों जीवा, हर बिन चसा ना जी।

निर्गुण कथा कथा है हर की, भज मिल साधु संगत जन की, तर भौजल अकथ कथा सुन हर की, गोविंद सत्संगत में लाए, हर रस रसना राम गुण गाए रहाओ। जो जन त्याव है हर हर नामा, तिन दासन दास करो हम रामा, जन की सेवा उत्तम कामा, जो हर की हर कथा सुन

दिन सजाए कूरा कछ पाचा, जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा, गौड़ी ग्वारे री महला चौथा। सतगुर सेवा सफल है बनी, जित मिल हर नाम ते आया हर तनी, जिन हर जपया।

जो गुण सांझी गुर स्यों करे नित नित सुख पाई। जितनी भूख अनरस साध है तितनी भूख फिर लाग। जिस हर आप कृपा करे सो वेचे सिर गुर आ गए। जन नानक हर रस तृप्ते।

ता हर नाम मन चित नित त्याव हो जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए

हर हर अर्थ शरीर हम बेचया पूरे गुर कै आगे सतगुर दाता नाम दिढ़ाया मुख मस्तक भाग सभागे राम गुरमत हर लिब लागे रहाओ कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिब

गुर ज्ञान गुरु लिव लागे, अज्ञान अंधेरा बिनस बिनासियो, घर वस्त लही मन जागे, साकत बद्धक माया धारी, तिन जम जोहन लागे, उन सतगुर आगे सीस ना बेचया, ओए आवह जाहे अपागे, हमरा बिनो सुनहु प्रभ ठाकुर।

पुर पुरख अजन्मा वडभागी मिल रामा। गुरजोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो। वडभागी मिल सुगड़ सुजानी जियो, वडभागी

मिल पूर्व लिखियड़े तुर करमा सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो मन मोर कोह केड़ा शब्द मुख पाया जियो।

सिर ऊपर ठाडो धर्म राए, मीठी कर कर बिखिया खाए। हो बंधो हो साधो बैर, हमरी भूम कौन घाले पैर।

गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जाकै कर्म प्राप्त होए।

लाथी भूख तृष्ण सब लाथी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरे तहरे ओ, मन जीतो जग सारी, तृप्त अघाए।

सिमर सिमर कसमल सब हर रे, मानस देहे ना मानस देहे बहुर नह पावे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु कशु उपाओ मुक्त का कर रे, मानस दे बहुर नह पावे, कशु उपाओ मुक्त

बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोहित सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट। तिसको वाहो वाहो जे वाट दिखावे, तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावे।

पूरा गुर पेटे सो झगर चुकावे, जेती है तेती केहो नाही, गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही। हों मैं बंधन बंद पवावै, नानक राम भगत सुख पावै। गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा कालै घर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम भुलाया।

सेवा गुर चरणी मन ते मन मानिया चूकी अहं ब्रह्मणी इन बिद कौन कौन नहीं तारिया हर जस संत भगत निस्तारिया प्रभ पाए हम अवर ना पारिया साच महल गुर अलख लखाया निहचल महल नहीं छाया माया साच संतोखे परम चुकाया जिन कै मन वसया सच सोई तिन की संगत गुरमुख होई ना

जन पूरा तित कट अनहत बाजे तूरा जो जन राम भगत हर प्यार से प्रभ राखे कृपा तार जिनकै हृदय हर हर सोई तिनका दर्श परस सुख होई सर्व जियां मह एको रवै।

नानक जन तरियै सोलह अष्टपदियां गुआरे री गौड़ी कियां गौड़ी बैरागण महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों गाई कौ गोयली राख है कर सारा अहंस पाल है राख ले आत्म सुख तारा इत उतरा खुदीन दयाला तो शरणागत नदर निहाला रहा जह देखो तह रव रहे रख रख नहारा तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा बिन उपमा जगदीश की बिन सैना अंधियारा जग बिन सत हम देखया लोभे अहंकारा गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा निज घर महल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द थिर को नहीं बूझै सुख होई क्या ले आया ले जाए क्या पास है जम जाला डोल बदा कस जेवरी आकाश पाताला

पहला गुर प्रसादी बूझले तो होए निबेरा, कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा, बिन गुर शब्द

ब्रह्म समाया राग गौड़ी ग्वारे री महला तीजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन का सूतक दूजा पहाओ परमे फूले आवो जाओ मन मुख सूतक कब है न जाए।

आए। गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई। गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन पर बुद्ध हो बूझो सोई। लोक समझावहो सुने ना कोई, गुरमुख समझो सदा सुख होई।

गुर कै शब्द पंच संहार है, आप तरे सगले कुल तारे। माया मोह नत बाजी पाई, मनमुख अंध रहे लपटाई, गुरमुख अलिपत रहे लिवलाई। बहुते भेख करे भेख धारी, अंतर तिशना फिरे अहंकारी, आप न चीने बाजी हारी। कापड़ पहर करे चतुराई, माया मोह अत परम पुलहाई।

वडभागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस्ते उपजे देव मोह प्यासा त्रै गुण भरमे नाही निज कर वासा।

खाए, जम डंड सह है सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की शरणाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रहे हर नाम लिवलाई।

नानक गुरमुख बूझै कोई गौड़ी महला तीजा नाम अमोलक गुरमुख पावै नामो सेवै नाम सहज समावै।

गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सतसंगत सतगुर पाल सतसंगत लग हर ध्याई हर हर चले तेरे नाल मन करहला बड़ भागिया हर एक

छड़ विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन कर हला बट भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया जम मार।

मन कर हले हर तरवर पुरख अकाल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा अष्टपदिया एक ओ अंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब एहो मन मह करत गुमाना तब एहो बावर फिरत बिगाना जब एहो हुआ सगल कीरीना ता तेर मैया कट कट चीना।

आया बिन सबेताला गिर तार धरण गगन अर तारे रव सस पवन पावक नीरारे दिन सरैन बरत अर भेदा शास्त्र सिमरत।

आराम सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निश्चल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अन पौ नगर तहां सद वसै तह पौ परमा सोग ना चिंता आवन जावन मृत ना होता तह सदा आनंद।

आऊं। जो इस मारे तिस कौ पहु नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे। जो इस मारे तिस की तृष्णा बुझे, जो इस मारे सो दरगह सिजहै। जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता। जो इस

तिस गुर कौ चूला वौ पाखा महा अगन ते हाथ दे राखा। तिस गुर कै ग्रह ढोवौ पानी जिस गुर ते अकालगत जानी।

हर संग रखवाला, पूर्ण पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला, कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम

ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पूजा अपायो पौ खंडन दुख पंजनो भगत वछल हर नायो अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृद्ध संत ओटायो निर्गुणी आरे की बेनती देहो दर्श हर रायो ना

आप रहया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक शरण तुम्हारिया मोहन तुद

तरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। सलोक आप है किया कराया आप है करने जोग नानक।

साध संग पतियाना दुख सुख उआकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निर्लेपा पूर्ण घट घट पुरख।

अखर महंत्र पवन प्रवतहारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन बखियाना, अखर मुकत जुगत पै परमा, अखर मुकत जुगत पै परमा, अखर कर्म किरत सोच धर्मा।

नमः सद्गुरु ए नमः श्री गुरुदेव नमः अष्टपति सिमराओ सिमर सिमर सुख पावो काल कलेश तन माहे मिटावो सिमराओ जास विसंभर एक है नाम जपत अगंत अनेक है वेद पुराण सिमरत सुधा खेर कीने राम नाम एक आखेर।

से पुरख प्रधान प्रभ कौ सिमरहें से बे मोहताजे प्रभ कौ सिमरहें से सर्व के राजे प्रभ कौ सिमरहें से सुखवासी प्रभ कौ सिमरहें सदा।

बलिहारी प्रभ कौ सिमरहे से मुख सुहावे प्रभ कौ सिमरहे तिन सुख बिहावे प्रभ कौ सिमरहे तिन आत्म जीता प्रभ कौ सिमरहे तिन निर्मल रीता।

एक अग्न नहीं बुझै, कोट उपाव दरगाह नहीं सिझै, छूट सनाही ऊब पयाल, मोह व्याप है माया जाल, अवर करतूत सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज।

अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कम दृष्टानी जिनतु साज स्वार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार दूध पर जोबन भोजन सुख सूद।

सो पंडित जो मन प्रबुद्धय राम नाम आत्म महसोदय राम नाम सारस पीवय उस पंडित का

अष्टपदे मानुष की टेक बिरछी सब जान देवन कहो एक भगवान जिसका दिया रह अघाय बहुर न तृष्णा लाग आय मारे राख को आप मानुष कै कृष्णा ही हाथ तिसका हुक्म।

अष्टपदी जब अकार एहु काश नाम दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तहरी आपन सुन समाध तब बैर विरोध किस संग कुमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किस है व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी जब एक कह हरागमा पार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तहै तब कवन निडार कवन कत डरै आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अविगत अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछ

बाप मित्र सुत पाई, जह सर्व कला आप है परवीन, तह वेद देव कहां को चीन। जब अपने आप उर तहारे, तो शगन अपशगन कहां बिचारे, जह आपन ऊच आपन आप नेरा, तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानक अपनी गत जान हूँ आप, जह अशल अशेद अपेद समाया, ऊहां किसह व्याप्त मा।

महे हो विसास। संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कह हृदय सब धर्म, संत जना सुन है शुभ वचन, सर्व व्यापी राम संग रचन।

अतुल क्यों तुलिया सेवड़ भागी जे तुद ध्याए दे जिन सतगुर मिलिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है गुरबाणी बनिया। सतगुर की रीस है हो

तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे, जन नानक धूड़ मंगाए तिस गुर सिख की, जो आप जपे अवरह नाम जपावे पौड़ी, जो तुद सच ध्यान दे से बिरले थोड़े, जो मन चित एक अराध दे तिन की बरकत खाहे असंख करोड़े।

करहो हर गुर सफल दर्शन की, फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी। नानक विचार है संत जन, चार वेद कहंदे

मन खोटे कूड़ कूड़ियारे। जां गुर कहे उठो मेरे भाई, बह जाहे पुसर बगलारे। गुर सिखा अंदर सतगुर वरतै, चुन कढे लद्धो वारे। ओए अगै पिछै बह मोह छपाए।

लेहो बेग मिलहो जन करना बिलंबा बेगमपुरा शहर को नाओ दुख अंदोह नहीं तेठाओ ना तस्वीश खिराज ना माल खौफ ना खता ना तरस जवाल अब मोहे खू

साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसार सद हृदय बसै, कौन हिरै अभिमान।

गुरमुख हर गुण आख बखाणी, जब जब नाम मन भया आनंदा, सत सत सत गुर नाम दृढ़ाया, सत सत सत गुर नाम दृढ़।

शोभा कंठ फूल प्रत्यक्षी दृष्ट पाए सगल निधान दुष्ट दूत की चूकी कान साध खुशियां।

सब जी संहारे एको एक आप एक एक है सगला पासारे जब जब होए सगल साध जन एक नाम तिहाए बहुत उधारे।

पात्र दृढ़ाया, पाए पर है सतगुरु कै जिन भरम बिदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच साज सवारिया रहा। कर गहली ने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वडियाई, सदा सदा गुण

शगुन अपशगुन तिसको लग है जिस चीत ना आवे तिस जम नेड़ ना आवे जो हर प्रभ पावे पुन दान जब तप जेते सब ऊपर नाम हर हर रसना।

क्रोध अभिमान शब्द मरे ता जात जाए ज्योति ज्योत मिले भगवान पूरा सतगुर भेटिया सफल जन्म हमारा।

जात। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ सिमरिय प्यारे दर्शन को बल जाओ जिस सिमरत दुख

ते कब हुन हार है हर हर गुण सार है। तिन जम नेड़ ना आवै जम्मन मरण तिना का चूका जो हर लागे पावै। गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम।

जहई राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहज हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माने सच्चा शब्द सुपाखिया पढ़।

ले हो भगत करो तुम शह केरी जो शह प्यारे पावे अपना भाणा तुम करो ता फिर शह खुशी ना आवे भगत पावे हो मार्ग बिखड़ा।

गुर अंजना गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल थल महियल पूरिया एक निमख जा कैर दै बसिया मिटे तिसह विसूरिया अगाध बोल।

साखी शब्द सुरत नहीं उपजाय, खिंच तेज सब लीना। श्रवणन बिकल पय संग तेरे, इंद्री का बल थाता। चरण रहे कर टरक परे, है मुख हो न निकसै बाता। थाके पंच

कहे कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोई आसा। जो मैं रूप किए बहुतेरे अब हुन

सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सूत एक मन सत संस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग

ब्रह्मत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन तन नहीं तीरे लालच देख काम लुभ दराता मन बिसर प्रभ हीरे रहाओ।

गुर शब्द हर रमणम मत तत ज्ञानम कल्याण निधनम हर नाम मन रमणम चल चित वित प्रमा प्रमं जग मोह मगन हितं।

हेत व्याप्तं दुख अधिक जन्म मरणं पज शरण सतगुर उबर है हर नाम रिज रमणं गुरमत निहचल मन मन मनं सहज विचारं गुरमत निहचल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साच अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर भवजल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन इहो शरीर तौ शरणी लब लो

मजलस तृष्णा तात मनसा कटोरी कूड़ परी पीलाए जमकाल। इत मद पीतै नानका बहुते खटिय है बिकार।

गुरमुख अंतर सखाई प्रभ होए, गुरमुख जिसनो आप करे सो होए, गुरमुख आप वडाई देवै सोए, गुरमुख शब्द

निर्मल मन करण घट घट अंतर मेरा स्वामी बूठा नानक नाम पाया प्रभ तूठा।

मिल सतगुर पुरख सुख होई, गुर जीवड दाता मैं अवर ना कोई। वडहंस महला चौथा।

समत कर जाने सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता। सुन गुरमुख नाम सब बिन से हो मैं पापा राम जप हर हर।

पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जपे हो संत हो राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरे हर उपदेसिया गुर विटड़े हो।

आप अलेख कुदरत कर देखै हुक्म चलाए सोई जियो मन रे राम जप हो सुख होई अहनिस गुर के चरण सरेव हो हर दाता भुगता सोई रहाओ जो अंतर सो बाहर देखो अवर न दूजा कोई जियो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलताओ ठाक रखो कर अपने गुर मिले ए मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो